0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: ഇനി എന്താടാ സജി എന്ന ചിത്രത്തിനായി അർഷാദ് റഹീം രചിച്ച ഗാനം വില്യം ഫ്രാൻസിസ് ഈണം നൽകി മൃദുര വാര്യർക്കൊപ്പം പാടിയത്.

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुकसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों के दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल

बिल्कुल भी ना करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं, जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और ये खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में ये सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचे। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट या बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं, जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ

0: टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं, तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़ी शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले। कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे, पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। विद दिस वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सेल्फ डायग्नोसिंग एंड सेल्फ मेडिकेशन, दिस इज चेतन रैपिंग अप फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ഇതുവരെക്കേട്ടത് സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി ലംഹേ.
2: തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ വൈകുന്നേരം 5:45 ഞാറ്റുവേല സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി. പ്രായോജകർ കേരള സർക്കാർ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ.
1: ഇനിയൊരു ചലച്ചിത്ര ഗാനം കേൾക്കാം. വയലാർ ശരചന്ദ്രവർമ്മ രചിച്ച് അലക്സ് പോൾ സംഗീതം നൽകി സുജാത പാടിയത്. ചിത്രം അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീട്.

तो ये तो थी हिंदी भाषा को समर्पित दो माइयां, और मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पर आऊंगी।

हूँ और एक मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम। जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश

हम हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, सब

0: धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि, मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहां हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ, जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं, उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ। जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है, दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई, जो कामयाबी फिल्म जगत के गीतकारों पर आते हैं। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
2: आप लोग अनुमति दे तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया, 2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छोड़ती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत वहां से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसके सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश जलवे जमाल के हैं, अंदाज भी है दिलकश जलवे जमाल के हैं, जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। उसी के लिए जिसने मुझे शायर बनाया। अंदाज भी है दिलकश जलवे जमाल के हैं, जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं, हर जन्म दिन पे उनको देते हैं हम बधाई, फिर भी ये कैसे पूछें कितने साल के हैं। तो एक मुक्तक और उनके लिए, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, इस बेखुदी ने देखिए क्या क्या बना दिया, पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा, तो हंसकर कह दिया कान्हा ने, इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर बे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है, अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानी श्याम घन, काला मेघ, तो काले मेघों के बीच से यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई पड़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से, अब बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से, बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। इतने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी।

0: पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता है और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है, एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए ये शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है, भाई आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में जो है ना, कभी कभी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आप किसी जो है ना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, उसमें देख करके ये ख्याल आया एक गजल का कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह वगैरह पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता। काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह, कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि लोकप्रिय मंच संचालक धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
2: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में चार पंक्तियां अक्सर कहा करता हूं। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी, और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा। मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ, आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोती बांच बांच के, अनपढ़ होते जाते पोती बांच बांच के, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है, लेकिन मक्के की रोटी मक्के की रोटी है। कुदरत के सब कानून को शायद है, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है, क्योंकि मक्के की रोटी है। ये तो नई पीढ़ी की बात थी।
3: आपने व्यंग लेख का जिक्र किया था, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यंग लेख सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है एक बंगला मिले न्यारा। वो मुझे एक साहित्य कार्यक्रम में मिली थी, प्रेमचंद के कार्यक्रम में। मैंने अपना परिचय दिया, उनका नाम पूछा तो बोली आधुनिका। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर दिया और मुस्कुराकर चली गई। पर एक दिन दोबारा वो एक सिग्नल पे मिल गई। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि मुझे किश्तों में देखनी पड़ी। वो बोली, हे घर पर आओ ना, यही फर्स्ट राइट में है, बंगलो नंबर 19। वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं। वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है, भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई। उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा, लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ दो बच्चे भी थे। बोले, इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया। आधुनिका बोली, ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली, माई हनी। मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले। मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली, हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेज चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेज शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, देखिए, मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली, जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बोले, हाँ, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए। ये कौन है बेबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूँ, तो वो खुश हुए। बोले, वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो, कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली, मेरे पापा हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा, वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें, इनकी बात भी रखने की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढकर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई, स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आधुनिका

0: स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अब ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही बाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक मिले। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: तो हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ। ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15, 20, 25, और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी। वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है, अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना, शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े, उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया। जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो, मैं अब ठीक हूँ, इसलिए अपने घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं। कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है। वो किस में लिखे आप तक पहुंचाता है, तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हों और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। और अंतिम है जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता

0: के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है। और उनके कुछ सीरियल्स हैं मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए। हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई आखिर हास्य के काव्य संग्रह है, और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है, और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है, और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो है आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी,
2: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर सुनिए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो धन्य थे सपूत, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको मां ने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया, वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले, कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पांत में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वतन के शहीदों को हमने गर भुला दिया, अभी तो माए ना जनेंगी देशभक्त लाल फिर कभी, तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहां बसंती चोलों वाले आज कल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे लोग।
1: क्या बात। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविन्द्र कात्यायन जी उपस्थित हैं और हम प्रोफेसर रविन्द्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले

0: सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं वो, कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है। और थोड़ी जानकारी देते उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल, फिर से प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही। और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर 12 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने। 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है, और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं, तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद मैं गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर एक वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत, और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है, और जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, 4 लाइनें हैं कि सिर्फ आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वह कालजयी कविता है। तो कालजयी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सब इस चीज को जान चुके हैं, यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वांग्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं 5, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे श्वेत्र क्षते सद्य पर निवृत्ते कांता संमितोपदेश युजे। इसमें सब कुछ तो है, लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता संमित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता संमित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है। तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं, तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, हम किस मौसम में बैठे हैं। वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है, और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो, या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं, वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन दूसरों को देने के लिए, उस आनंद, उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक हैं, और ये जो प्रति सद्भाव, सहृदयता से रहें, और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से, जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य

0: कि इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में आओगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं, और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो व्यंग्य हो, लेकिन जो उदात्तता कविताओं में इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आसकरण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम की मैं मंजू द्विवेदी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

कक्कर और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल संगीत चित्रगुप्त का यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से, ये गाना है उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है प्रीतम का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देख और
1: ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: काई पोछे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती
4: हे मई जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर

जोहर महमूद इन हांगकांग। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट हमने फेसबुक पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कितनी खूबसूरत है ये तस्वीर जिसने मेरे मन को छुआ, तेरी बिंदिया इसमें साफ नजर आती है। हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा है, ये दोस्ती ये यारी कभी नहीं छूटेगी। मेरे साथी तेरे बिना कैसा जीना, पर कभी कभी दिल ये सोचता है क्या आदमी जो सोचता है वो होता है। पता नहीं जाने कैसे कब मैं इस हंसी चीज का तलबगार हो गया। मेरे दिलबर कब तक मुझे तड़पाओगे, अब मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूँ। और हाँ श्रोताओं, आपने पहचान लिया कि वो कौन है। जी हाँ, आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। यही बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है और ये भी लिखा है कि उनके फिल्मों के गाने और उनकी बातों से सुरीला सफर और भी आनंददायक हो जाएगा। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी दमदार आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दर्शकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। आप केवल सिनेमा के महानायक नहीं बल्कि लगन, संघर्ष और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। आपको जन्मदिन पर उत्तम स्वास्थ्य, सुख और खुशियों की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, इन बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुरूआत कर रहे हैं। एक बेमिसाल अदाकार के लिए बेमिसाल फिल्म का सबसे पहले ये गाना, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया बेमिसाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत में कोई साधारण पंक्तियां नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें दिल के एक पूरे सफर का निचोड़ है, जिसमें तस्वीर की खूबसूरती से शुरू होकर मन को छूने वाली मासूमियत है। बिंदिया की चमक में बसे प्यार का इकरार, ख्वाबों की मीठी उड़ान और दोस्ती यारी की अटूट कसम तक सब कुछ सिमटा हुआ है। फिर उसी में जुदाई का दर्द भी है कि तेरे बिना जीना कैसा। तो कभी कभी उठता वो गहरा सवाल भी कि क्या सोचा हुआ सच में होता है, और इसी उलझन के बीच वो अनजाना सा एहसास जब इंसान हौले हौले किसी हसीन चीज का तलबगार बन जाता है, तड़प, इंतजार और आखिर में अपनी पहचान की तलाश। सच कहें तो आज की इबारत एक आशिक, एक दोस्त और एक सोचने वाले इंसान की पूरी कहानी कह जाती है। जी हाँ, आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की फिल्म के गाने हम आपको सुनवाएंगे, और या यूं कहें कि सुनवा रहे हैं। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्मों ने मात्र मनोरंजन ही नहीं किया, समाज को एक दिशा भी दी है। उनका भी शुरू का सफर बड़ा आसान नहीं रहा है, लेकिन वे संघर्ष करते रहे और प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर उनके जीवन में एक तूफान सरीखी आई, जिसने फ्लॉप हीरो का ठप्पा हटा दिया और वे रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गई। उनकी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार रहता था और सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्मों के टिकट एडवांस में बिक चुके होते थे। उस महानायक पर हमें गर्व है। और आज कुछ एक दो सवाल हैं हमारे, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं, जिसमें से कुछ तो हमारे

श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं। और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ। याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत, अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही है ये आप बताइए।

0: मेरे मन को।
1: अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुनाया। आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर के प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नजर आती है, हर किरदार का तलबकार, युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित

ये जो सफर है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

लीजिए, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे डायलॉग हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में एंथनी गोंसाल्विस के मजेदार अंदाज और हास्यपूर्ण संवाद आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिख रहे हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक साथी लिखते हैं त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।

बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिवहरी का। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का यह डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ही चाबी निकालकर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद है। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देना चाहिए? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहां तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और मां बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज का गाया हुआ फिल्म एक नजर का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों को एक ऐसा एंग्री यंग मैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्ति, तो ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूं तो यही बात मैं बोलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूं। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी है, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीजें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय है। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने यह लिखा है

कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना डॉन फिल्म का गाना।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। मंजू द्विवेदी के साथ आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400909।

आवाज आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस

गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की। श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनीता बिड़वे की। और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्रनगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा, शिवानी चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष, तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगरदिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगरदिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिसनेग अकोला से शिवराज भारती, टीना तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
2: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
3: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मूल्य देखना चाहिए।
4: ओए देख के चलो, तुरी जाना है तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
5: ओए केड़े पिंडो आया?
4: पता नहीं तेनू, शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
2: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिस्टर शर्मा बाहर ही खड़ी थीं।
6: क्यों जी, कुछ बात बनी?
3: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
6: क्या कहते हैं?
3: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
6: इसका मतलब?
3: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
6: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला काटी।
4: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
6: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
3: कोशिश करेंगे।
6: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
3: हो सकता है।
6: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
4: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
6: आए हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
4: ओहो, लेकिन वो
6: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
3: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
7: अरे आइए आइए शर्मा जी।
8: नमस्ते
7: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब धन्य भाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे।
8: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप,
7: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं।
8: आप तो जानते ही हैं दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
7: हाँ आप बैठिए।
8: हाँ बस मैं ठीक हूँ ठीक हूँ।
7: और सुनाइए।
8: वो बस ऐसा था कि
7: पहले ये बताइए क्या लेंगे आप।

0: नहीं
1: पानी है सोडा?
0: नहीं नहीं मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता।
1: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
0: वो बात यह है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
1: आई डोंट ड्रिंक।
0: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक
1: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
0: हाँ हाँ
1: आप इसे अपना ही घर समझ
0: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझकर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
1: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
0: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि
1: क्या हुआ?
0: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
1: चक्कर? खनखोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
0: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
1: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
0: फिर आपने क्या किया?
1: बहुत कोशिश की उन्होंने।
0: फिर आपने क्या किया?
1: मैंने
0: हाँ हाँ आपने क्या किया?
1: मैं ऊपर गया और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
0: फिर
1: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
0: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
1: नहीं।
0: फिर
1: मैं और ऊपर गया।
0: अच्छा फिर
1: वहाँ भी न रुके?
0: तो
1: मैं और ऊपर गया
0: और वहाँ, हाँ फिर वहाँ क्या हुआ?
1: क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
0: और वो लोग?
1: वो लोग नहीं माने।
0: फिर आपने क्या किया?
1: करना क्या था, कह दिया उनसे।
0: क्या
1: कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
0: छुट्टी ले ली? कितनी?
1: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
0: लेकिन इतनी लंबी लीव?
1: मेडिकल।
0: यानी आपने ऐसी सर्टिफिकेट वगैरह?
1: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
0: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
1: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
0: क्या मतलब?
1: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर।
0: जिगर जिगर
1: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
0: और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
1: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर से के नहीं रुकी है
2: हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
0: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
3: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
0: तो क्या करूं फिर?
3: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
0: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
3: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह ही यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
0: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
3: ओ, जो कोई भी हो उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए।
0: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
3: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बढ़ गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर नचाते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहाँ से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिली आई जाकर सुबह उससे।
0: अच्छा अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
0: और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
0: ओह, इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ?
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
4: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
5: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आ

0: जाती है।
1: मौत से पहले मन में कायरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
0: तुम मतलब होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
1: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
0: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
1: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
0: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
1: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
0: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
1: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूँ।
0: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
1: कैसी भूल उषी?
0: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
1: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
0: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
1: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए बचा के रखो। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहाँ आया करूँगा।
0: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
1: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
0: तो
1: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
0: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे तरकीब समझ में आई है।
1: क्या?
0: हम शादी कर ले।
1: ये कैसे हो सकता है?
0: बारात लाकर, बाजे बजाकर।
1: नहीं नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
0: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं, या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है। सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
2: क्या बात है?
0: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
2: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
0: राम जाने क्या उल जरूर बक रही है।
2: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
3: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
2: घनश्याम जी?
3: ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
2: जी
3: जी।
4: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेने।
1: नहीं, नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: कुछ नहीं, वो
3: इस जुलूस के साथ है?
2: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
3: तो भैया जाओ जाओ, अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
2: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर?
4: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
5: कहिए।
0: कहिए क्या बात है
2: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
2: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
2: नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
2: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पे बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए।
2: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
2: HP शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
2: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
2: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
2: थैंक यू।
3: नमस्कार घनश्याम जी।
6: आइए रतनलाल जी, कहिए।
2: जी मैं HP शर्मा।
6: हाँ, काम बताइए।
2: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे।
6: वही तो पूछ रहा हूँ
2: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
6: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
2: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
6: तो फिर अनर्थ कैसा?
2: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
6: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
2: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
6: देखो रतनलाल
2: जी, HP शर्मा हूँ। HP शर्मा, देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
6: ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
2: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ
6: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
2: मैंने सोचा आपसे जबानी।
6: अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
2: मैं अभी लिख लाता हूँ।
6: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
2: नहीं नहीं, पानी पानी का कष्ट न करे मैं।
6: हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
7: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गए, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
5: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे।
2: हाँ, आना तो था बस।
5: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
2: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
5: नो नो नो, मैं ये अफसरों अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
2: जी
5: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
2: जी
5: कॉन्टेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
2: 5,000?
5: हाँ, बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
2: वो तो
5: क्या किया जाए।
2: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना
5: पैसा। अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
2: ना ऐसी बात

0: नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है।
1: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
0: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना, मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
1: अम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे आपकी मर्जी है, बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप ही सोचिए।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
1: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
0: नहीं नहीं, बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
1: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट से मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
0: यज्ञ तो ठीक है, पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
2: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
0: 201 ब्राह्मणों का?
2: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना। देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
0: मगर इतना पैसा
2: है तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
3: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
4: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
0: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
2: नक्षत्र बाबा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़े। ये ग्रह तो किसी तरह चलना ही चाहिए।
4: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
2: बाबा ग्रह चल जाएंगे ना।
4: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं।
5: ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
0: मैं समझता हूँ महाराज।
4: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद की तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
3: सच बाबा?
4: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
0: 1.5 तोला सोना?
4: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
3: राजवंती, 1.5 तोला सोने का दान?
2: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
4: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
3: सच कह रहे हैं आप?
4: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
0: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
6: माजी माजी माजी,
2: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
6: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201 ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
2: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
1: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
7: पिताजी ये आपसे मिलने आए थे।
1: ओह आप क्या 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव?
2: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
7: आइए चंद्रकांत जी।
2: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे घर में आए हैं।
3: चंद्रकांत, चंद्रकांत सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
2: क्या ब्राह्मण नहीं?
3: सी के यादव है।
2: तो क्या ब्राह्मण?
3: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
2: क्या कह रहे हैं आप?
3: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है।
0: नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
0: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
2: राम कैसा अंधेर है, अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।

0: शंकर बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
1: ये यज्ञ भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
2: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
1: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
3: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
2: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
3: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
2: तो सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
3: अब तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
1: तुम सचमुच आ गए हो?
3: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
4: कहाँ के रहने वाले हो?
3: इंदौर का।
4: और तुम्हारे पिताजी?
3: इंदौर के।
4: और तुम्हारे दादा?
3: दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
4: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
3: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
4: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
1: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बांधना उजाड़ देते।
3: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
5: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
4: जाने का समय आ गया है बेटा।
2: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
5: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
2: फिक्र न करो उषा, बहनदान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
6: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
4: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
3: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
4: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता अपनी धरती अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
3: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
6: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
4: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
7: 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी ही हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीना नाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, पार्वती।

0: भाई तू क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।